सचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन हो पाई कर कर देखा कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करन हंजाई सो पात शाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए के वड वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई ना जाने तेरा केता के बड़ चीरा राव सब सुरती मल सुरत कमाई सब कीमत मल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहन न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धां पुरखां कियां वड्याईया तुद बिन सिद्धी किनै ना पाईया कर्म मिलै नाहीं ठा करहाईया

गुण एहो होर नाहीं कोए, ना को होआ ना को होए। जे वड़े आप ते वड़ तेरी दात, जैन दैन करके कीती रात। खसम विसार है ते कम जात, नानक नावै बाज सुनात।

राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा

से भगत भले जन नानक जी जो पाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जे बड़े वरना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई।

सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जन होई। आस्था महला चौथा।

सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

नहीं पड़या, मूर्ख मुगदा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की शरणा, जिन तू नाहीं विसरिया। आसा महला पंजवां। मूर्ख मुगदा जन्म पया।

मिल साध संगत पज केवल नाम, सरंजा मिलाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। पातशाही दसवीं कब्यो बाज बेनती चौपई, हमरी करो हाथ द रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो व्रत पारा। हमरे दोष्ट सब तुम काव, आप हाथ दे मोहे बचाव। सुखी बसै मोरो परिवार, सेवक सिख सब करतार। मोर अच्छा निज कर दे करे, सब बैरन का आज संगरे। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं।

सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सदरन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने गट गट के बट बट की जाने जब उद करख कर करतारा प्रजा तरत तब दे अपार जब या करख करतो कब हूं तुम मैं मिलत देह दर सब हूं।

अंडज जे रज से तेज कीनी उत्पुज खान बहोर रच दीनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाई अचम पव आदि जुगाद स्वरूप सुजम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संग्रो दोष जेते उठ बत पाता सकल मलेश करो रण काता जे आस तुज तब शरणी परे दिन के दोष दुख तह मरे पुरख

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख दरे नहीं आने ओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न माने ओ। सिमरत

साचान मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मनाए वसया जिन इच्छा सब पजाइया सदा कुर्बान किया गुरु विटो जिस दियां ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस किते काल कंटक मारिया

संत साजन भय सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर

साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहिबजादे नीहां च खड़े सिखी सिदक नूं कायम रखदे हुए गज के फतेह बुला रहे हैं।

संत मिलै किस सुनिए कहिए, मिलै असंत मस्त कर रही है। बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रव रही है। रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी, मूर्ख स्यों बोले झाक।

सवार है। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे रहाऊ। हाड जले जैसे लकड़ी का चूल्हा, केस जले जैसे घास का पूला। कहूं कबीर तब ही नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे। गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चहो दिस गगन रहाए ले। आनंद मूल सदा पुरखोत्तम, कट बिन सह गगन ना जाए ले। मोहे बैराग भयो, एहो जियो आए कहां गयो रहाओ। पंच तत् मिल काया कीनी, तत् कहां ते कीन रे। कर्म बद तुम जियो कहत हो, कर्म है किन जियो दीन रे। हर मह तन है, तन मह हर है, सर्व निरंतर सोए रे। कह कबीर राम नाम ना छोड़ो, सहजे होए सो होए रे। राग गोंड बाणी कबीर जियो की, घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पूजा बांध पिला कर डार्यो, हस्ती क्रोप मूंड मह मार्यो। हस्त भाग कै चीसा मारे, या मूर्त कै हों बलिहारे। आहे मेरे ठाकुर तुमरा जोर, काजी बकबो हस्ती तोर रहाओ। रे महावत तुझ डारो काट, किसै तराव हो काल हो साट। हस्त न तोरै धरै ध्यान, वाकै हृदय बसै भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया भर लीना, मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोविंद,

ना यो जोगी ना अवतूता, ना इस माये ना काहू पूता, या मंदिर में कौन बसाई, ताका अंत न को उपाई, रहाओ ना यो गिरही ना ओदासी, ना यो राज ना भीख मगासी, ना इस पिंड न रख तू राती, ना एहो ब्राह्मण ना एहो खाती, ना एहो तपा कहावै सेख, ना एहो जीवै ना मरता देख, इस मरते को जे को रोवै, जो रोवै सोई पत खोवै, गुर प्रसाद में डगरो पाया, जीवन मरन दो मिटवाया, कहो कबीर एहो राम की अंश, जस कागद पर मिटै ना मंस, गोंड टूटे तागे निखुटी पान, द्वार ऊपर चिलका वह कान, कूच बचारे पुए फाल, या मुंडिया सिर चढ़ बोकाल, एह मुंडिया सगलो द्रब खोई, आवत जात नाक सर होई, रहाओ तुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वाका मन राता, लड़की लड़कन खैबो नाही, मुंडिया यान दिन तापे जाही, एक दोए मंदर एक दोए बाट, हमको साथर उनको खाट, मूंड पलोस कमर बद पोथी, हमको चाबन उनको रोटी, मुंडिया मुंडिया हुए एक, ए मुंडिया बूदक की टेक, सुन अंधली लोई बेपीर, इन मुंडियन भज सरन कबीर, गोंड खसम मरे तो नार ना रोवै, उस रखवारा औरो होवै, रखवारी का हुए बनास, आगे नरक इहा भोग बलास, एक सुहागन जगत प्यारी, सगले दी जंत की नारी, रहाउ सुहागन गल सो है हार, संत को बिख बिगसै संसार, कर सिंगार बह पखियारी, संत की ठिठकी फिरे बेचारी, संत भाग ओह पाछे परे, गुर प्रसादी मारू डरे, साकत की ओह पिंड परायण, हमको दृष्ट परे त्रिख डायण, हम तिस काबो जानिया पेव, जब हुए कृपाल मिले गुरदेव, कहो कबीर अब बाहर परी, संसार कै अंचल लरी, गोंड ग्रह सुबा जा कैरे नाही, आवत पहिया खूदे जाए, वाकै अंतर नहीं संतोख, बिन सुहागन लागे दोख, धन सुहागन महापवीत, तपे तपीसर डोले चीत, रहाओ सुहागन किरपन की पूती, सेवक ताज जगत स्यों सूती, साधु कै ठाडी दरबार, शरण तेरी मोको निस्तार, सुहागन है अत सुंदरी, पग नेवर सनक सुनहरी, जौ लग प्राण तउ लग संगे, नाही ता चली बेग उठ नंगे, सुहागन भवन त्रै लिया, दस अठ प्राण तीर्थ रस किया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे, बड़े भूपत राजे है सीधे, सुहागन उरवार ना पार, पांच नारद कै संग बिदवार, पांच नारद के मिटवे फूटे, कहो कबीर गुर कृपा छूटे, गोंड जैसे मंदर में बलहर ना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल ना टीकावे, साधु बिन ऐसे अवगत जावे, जारो तिसै जो राम ना चेतै, तन मन रमत रह मह खेतै रहाउ, जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोइयै, सूत बिना कैसे मणि परोइयै, कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाइयै, साधु बिन तैसे अवगत जाइयै, जैसे मात पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई, घोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार, जैसे बाजे बिन नहीं लीजै फेरी, खसम दुहागन ताज ओहेरी, कह कबीर एक कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना, गोंड कूटन सोए जो मन को कूटै,
मन कूटै तो जम ते छूटै कुट कुट मन कसवटी लावै सो कूटन मुक्त बहु पावै कूटन किसे कहो संसार सगल बोलन के माहे विचार रहाउ नाचन सोए जो मन स्यो नाचै झूठ ना पतियै परचै साचै इस मन आगे पूरै ताल इस नाचन के मन रखवाल बजारी सो जो बजारह सोदै पांच पलीतह कौ पर बोधै नौ नायक की भगत पछानै सो बाजारी हम गुरमाने तस्कर सोए जे तात न करै इंद्री कै जतन नाम उच्चरै कहो कबीर हम ऐसे लखन धन गुरदेव अत रूप विचखन गोंड धन गोपाल धन गुरदेव तन अनाद भूखे कवल टहकेव तन ओए संत जने ऐसी जानी तिनको मिलबो सारिंग पानी आद पुरख ते होए अनाद जपिए नाम अन कै साध रहाउ जपिए नाम जपिए अन्न अम्बे कै संग नीका वन अन्न बाहर जो नर होवे तीन भवन में अपनी खोवे छोड़ह अन्न करह पाखंड ना सुहागन ना ओहे रंड जग में बगते दूधा तारी गुप्ती खावे है बटका सारी अन्न बिना ना हुए सुकाल तजय अन्न ना मिले गोपाल कहो कबीर हम ऐसे जानिया तन अनाद ठाकुर मन मानिया राग गोंड बाणी नाम देव जी की घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद असमेद जगने तुला पुरख दाने पराग इशनाने तौ ना पुज है हर कीर्त नामा अपने राम है भाजरे मन आलसिया रहाउ गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पढ़ता सगल कर्म अष्टा गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहत रहता सेवा सकत संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं पाज नामा तरस भाव सिंदं गोंड नाद भ्रमे जैसे मृगाय प्राण तजे वाको ध्यान ना जाए ऐसे रामा ऐसे हीरो राम छोड़ चित अंत ना फेरो रहाउ ज्यों मीना हिरे पसुआरा सोना गढ़ते हिरे सुनारा ज्यों बिखरी हिरे पर नारी कौडा डारते हिरे जुआरी जह जह देखो तह तह रामा हर के चरण नित त्यावे नामा गोंड मोको तार ले रामा तार ले मैं अजान जान तरपे ना जानो बाप बीखला बाह दे रहाउ नर ते सुर होए जात निमख मैं सतगुर बुद्ध सिखलाई नर ते उपज सुर्ग को जीत्यो सो अवखद मैं पाई जहां जहां तू नारद टेके नैक टकावो मोहे तेरे नाम अवलंब बहुत जाने उदरे नामे की निज मत ए गोंड मोहे लागती ताला बेली बचरे बिन गाय अकेली पानिया बिन मीन तलप है ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाउ जैसे गाय का बादशाह सूतला थन चोखता माखन कूतला नाम देव नारायण पाया गुर भेटत अलख लखाया जैसे बिखै हित पर नारी ऐसे नामे प्रीत मरारी जैसे तापते निर्मल कामा तैसे राम नामा बिन बापरो नामा राग गोंड बाणी नाम देओ जियो की घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर करत मिटे सब भरमा हर को नाम लै उत्तम धर्मा हर हर करत जात कुल हरी सो हर अंदले की लाकरी हरे नमस्ते हरे नमः हर हर करत नहीं दुख जमह रहाउ हर हर नाक्ष हरे पुराण अजय मल कियो बैकुंठ थान सुआ पढ़ावत गण का तरी
सो हर नैनहु की पूतरी हर हर करत पूतना तरी बाल घातनी कपटह भरी सिमरन द्रोपद सुत उदरी गौतम सती सिला निस्तरी केसी कंस मथन जिन किया जी दान काली कौ दिया प्रणवै नाम ऐसो हरी जात जपत पै अपदा करी गोंड पैरों भूत सीतला तावै हर बाहन उहिशा

जो नर त्यावै बर्द चढ़े डौरू डमकावै महामाई की पूजा करे नर से नार हुए अवतर तू कहियत ही याद पुहानी मुक्त की बरिया कहाँ छिपानी।

हुआ परगास, कर कृपा लीने कीट दास, कौरव दास अब तृष्णा चूकी, जप मकंद सेवा ताहू की गोंड। जे ओ अठ सठ तीरथ नहावै, जे ओ द्वादश शिला पूजावै, जे ओ कूप तटा देवावै, करै निंद सब बिरथा जावै, साधका निंदक कैसे तरै, सर पर जानहु नरक ही परै रहाव। जे ओ ग्रहण करै कुल खेत, अरपै नार श्रृंगार समेत, सगली सिमरत सर्वनी सुनै, करै निंद कवनै नहीं गुनै, जे ओ अनक प्रसाद करावै, भूम दान शोभा मंडप पावै, अपना बिगार बिराना सौंडै, करै निंद बहुजोनी हांडै, निंदा कहां करो संसारा, निंदक का प्रगट पाहारा, निंदक सोध साध बिचारिया, कौरव दास पापी नरक सधारिया जोड़। राम कली महला पहला, कर पहला चौपदी

आदि। कोई पढ़ता सहसा किरता, कोई पढ़े पुराना, कोई नाम जपै जप माली, लागे तिसै त्याना, अब ही कब ही किछू ना जाना, तेरा एको नाम पछाना, ना जाना हरे मेरी कवन गति, हम मूर्ख अज्ञान सरन प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ, कबहू जियड़ा ऊब चढ़त है, कबहू जाए पयाले, लोभी जियड़ा थिरना रहत है, चारे कुंडा पाले, मरन लखाए मंडल मह आए, जीवन साजह माई, एक चले हम देख है स्वामी, पाहे बलंती आई, ना किसी का मीत, ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई, प्रणवत नानक जे तू देव है, अंते हुए सखाई, राम कली महला पहला, सर्ब ज्योत तेरी पसर रही, जह जह देखा तह नरहरी, जीवन तलब नवार स्वामी, अंधकूप माया मन गाडिया, क्यों कर उतरों पार स्वामी रहाओ, जह भीतर घट भीतर बसिया।

माही निराश बलाए निहचो नानक करते पाए प्रणवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संद मलाए दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए राम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई सनमुख सिद्ध भेटन को आई निश्चो देह वड्याई गुर तार तारन हारिया देह भगत पूर्ण अवनासी हौ तुझको बलिहारिया रहाउ सिद्ध साधक जोगी अरजंगम एक सिद्ध जिन्नी त्याया परसत पैर सिजत ते स्वामी अखर जिनको आया जप तप संयम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक भेट्यो साचै शब्द नवेरा राम कली महला पहला सुरती सुरतर लाई है एत तन कर तुलहा लंग है जेत अंतर पाहे तिसै तू रख एहनस दीवा बले अथक ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सोजी पाए रहाओ हसी मिट्टी सोजी होए ताका किया माने सोए करनी ते कर चको ढाल ऐथे उथे निभही नाल आपे नदर करे जा सोए गुरमुख विरला बूझै कोए तित घट दीवा निश्चल होए पानी मरे ना बुझाया जाए ऐसा दीवा नीर तराए डोले वाओ ना वड्डा होए जापै ज्यों संघा सुन लोए खतरी ब्राह्मण सूद के वैस निरत ना पाइया गणी सहंस ऐसा दीवा बाले कोए नानक सो पारंगत होए राम कली महला पहला तुदलो निमन मनन तेरा नाऊ साच भेट बैसन कौ थाऊ सत संतोख होवे अरदास तां सुन सद बहाले पास नानक बिरथा कोए ना होए ऐसी दरगाह साचा सोए रहाऊ प्राप्त पोता कर्म पसाऊ तू देव है मंगत जन चाऊ भांडे भाऊ पवे ते त्याए तुरतै छोड़ी कीमत पाए जिन किस किया सो किस करे अपनी कीमत आपे धरे गुरमुख प्रगट हुआ हर राय ना को आवे ना को जाए लोक तकार कह मंगत जन मांगत मान ना पाया सहकियां गल्ला दरकियां बातां तैं तां कहन कहाया राम कली महला पहला सागर मह बूंद बूंद मह सागर कमन बुझै बिद जाने उत पुज चलत आप कर चीने आपे तत पछाने ऐसा ज्ञान बिचारे कोई तिसते मुक्त परम गत होई रहाओ दिन मह रैन रैन मह दिनियर उसन सीत बिद सोई ताँ की गत मित अवर ना जाने गुर बिन समझ ना होई पुरख मह नार नार मह पुरखा बूझो हो ब्रह्म ज्ञानी तुन मह ध्यान ध्यान मह जानिया गुरमुख अकथ कहानी मन मह जोत जोत मह मनुआ पंच मिले गुर पाई नानक तिनकै सद बलिहारी जिन एक शब्द लिवलाई राम कली महला पहला जा हर प्रभ कृपा तारी ता हूं मैं विचों मारी सो सेवक राम प्यारी जो गुर शब्दी बीचारी सो हर जन हर प्रभ पावे एहनस भगत करे दिन राती लाज छोड़ हर के गुण गावे रहाओ तुन वाजे अनहद घोरा मन मानिया हर रस मोरा गुर पूरे सच समाया गुर आद पुरख हर पाया सब नाद बेद गुरबाणी मन राता सारंग पानी तह तीर्थ वर्त तप सारी गुर मिलिया हर निस्तारी जह आप गया पौ भागा गुर चरणी सेवक लागा
गुर सतगुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मलाया। राम कली महला पहला, साधन भोजन मांगत भागे, खुदिया दुष्ट जलै दुख आगे। गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावे जन कोई। जोगी जुगत सहज घर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया। भिखिया पाए शब्द तृपता सै रहाउ, पंच बैल गडिया देह धारी। राम कला निबह पत सारी, धर टूटी गाडो सिर भार। लकड़ी बिखर जरी मंज भार, गुर का शब्द विचार जोगी। दुख सुख सम करना सोग बेयोगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी। अस्थिर कंध जपै निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा। काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन मह मुंदरा

0: सोई उस परमात्मा दे नाम नू सिमरो जेड़ा अछल है, जेड़ा किसे ठगी विच आउण वाला नहीं। कोई चोर, कोई जल, कोई अग, कोई विघन जिन्हू रुकावट पाए नहीं सकदा, एथों शुरू करदे ने हुण तीसरे पातशाह दे सवैये। उस वाहिगुरु दे नाम दा सिमरन करो जो अछल संसारे। इस संसार विच इक वाहिगुरु दा नाम ही अछल है।
1: जिन भगत भव जल तारे सिमरो सुई नाम प्रदान।
0: फिर प्रमाण दिंदे ने भट्ट जी।

परम सत्कार योग गुरु पेशा जी निवाजी गुरु स्वरूप साध संगत आप उपमान दे पात्र हो वड्या भागा वाले हो जो नित नेम अनुसार सतगुरां दे बचन सुन वास्ते सतगुरां दा उपदेश सुन वास्ते गुरु महाराज दा जस कीर्तन गुरु की बाणी सरवण करन वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरणा विच पुजे हो। गुरु घर तो साजे नवाजे गुरमुख प्यारिया ने अमृत रूप बाणी दा सोदर संध्या रह रास आनंद मुंदावनी जो सानू महाराज ने शामा दे नित नेम बख्शे हन उन्हां दा पाठ बड़े प्यार नाल आप जी नू सुनाया आप जी ने सरवण कीता बख्शिश होई है सतगुरां दी बाणी पढ़नी पढ़दे उहदी विचार करनी शब्द अर्थां नाल जुड़ना ओह आपां नू सतगुरां दी पवित्र बाणी दी दोए समय तुरकी बाणी दी कथा विचार दी बख्शिश चल रही है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज धन गुरु कियां संगतां आप जी दी बख्शिश सहयोग दा सदका तुरकी बाणी जिन्हां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच पट्टां दे सवैये करके लिखत है ओ धन धन धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी दी महिमा बड़े विद्वान खोजी महान ग्रंथां दे अध्ययन करन वाले जो भट सन वेदां दे अवतार जिन्हां ने बहुत कुछ पढ़िया बहुत कुछ देखिया बड़ा कुछ सुनिया पर आत्मक ज्ञान ते मन दी शांति प्राप्त ना होई ओ भटकदे फिरदे श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे दरबार विच पुजे ने। गुरु अर्जन पातशाह गुरु नानक देव जी दी बख्शिश द्वारा जो बाणी द्वारा उपदेश सानू मिल रहा है ओ सारी संगत आपने कल सरवण कीता सी धन धन सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी दे बारे सवैये महल्ले तीजे के तीजा श्री गुरु अमरदास जी दी महिमा अकथ अगम अगोचर जो श्री गोइंदवाल साहब विखे संसार नूं तार रहे हन ते 12 साल लगातार श्री खंडूर साहब विखे धन धन श्री गुरु अंगद देव महाराज जी दे चरणा विच रह के सारी दुनिया दी लाज दुनिया दा विहारक समाजिक पक्ष छड़ के कि कुड़मां दे घर रह के पानी ढोना जोड़े साफ करने सब परे करके एक सेवा सिमरन दास बन के कीती ओदे विचों फिर वडियाईयां प्राप्त कीतियां 12 वर गुरु अंगद देव पातशाह जी ने बख्शिश कीते ओ हुण सतगुरु गुरु अमरदास महाराज श्री गोइंदवाल साहब वसा के गुरु अंगद देव जी दे बचन नाल ही ए शहर वसाया सी। गोइंदवाल गोबिंदपुरी समझलन तीर विपास बनायो विपास ब्यास दरिया दा नाम है तीर कहिए कंडा ब्यास दरिया दे कंडे ते सतगुर पातशाह जी ने ओ नगर वसा के संसार नूं जो गुरु नानक देव जी ने मार्ग गुरु अंगद देव जी ने मार्ग बख्शे
उस गुरमत गाड़ी राह दा उपदेश दे रहे ने। आओ पटां दे मुखार बिंद तो सतगुरां दी शोभा पवित्र बाणी द्वारा

0: रणजीत सिंह साहिब मेरा गुरु ग्रंथ साहिब है, मैं तो ये बुद्धू हां कि ढूंढदा पे है।
1: रणजीत सिंह दे अखां चो जल आ गया, चुपने लगा। ते बाबा जी कहन लगे रणजीत सिंह एक अगे गलती कर बैठे, दूजी फिर कर लगे। बोलो श्री किते अगे चकन लगे। महाराज सिरे पंजाब रणजीत सिंह अपना मस्तक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दे अगे रख के भुल बख्शाई। पातशाह भुल गया मैं, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगणना विचारो कोई। सारे आखो माटी खा क्या तो है स्वामी मानस की। ये गुरु नानक दे प्यारे जेडे रंगे हुए ने उन्हों दी बात है। असा इस बात नु अमल विच लियाउणा है, हिरदे विच धारण करना है, ताकि मेरा सतगुरु कृपा करे जिवे गुरु नानक दे नाम दे नाल ओ रंगे गए ने, गुरु नानक साडे ते भी कृपा करे, असि भी ओदे नाम दे नाल रंगे जाइए रंगे जाइए। गुरु रामदास पातशाह कहते ने हर नाम हर रंग है, हर रंग मजीठे रंग गुर तुठे, हर रंग चाड़िया फिर बहुड़ न होवी

रचना ओई तन है, जीभा ओही तन है, जेड़ी रचना जेड़ी जीभा तेरा नाम जपदी है सतनाम, जेड़ी रचना तेरे गुण गायन करती है,

वो शीश फल है, वो मस्तक पावन है, पवित्र है, जेड़ा गुरु नानक दे चरणां विच जाके झुकदा है ओही मत्था पवित्र है, ओही शीश फल है, ओही निर्मल है, ओही स्वच्छ है, ओही मस्तक भागा वाला है जेड़ा गुरु नानक दे चरणां दी छोह प्राप्त करदा। साहिब गुरु रामदास पातशाह अखीरली पंक्ति विच कुर्बान ते सदके जांदे ने, गुरु विटोह नानक वारिया मैं बलिहार जा रहा, कुर्बान जा रहा, सदके हां,

जिन हर हर नाम तेरे। हे मेरे पातशाह, हे अकाल पुरख, मैं कुर्बान हां उस जीवा तो, उस हृदय तो, उस मन तो, जिन्हां ने तेरे नाम नू हृदय विच चेते रखे है, ते स्वास स्वास जपे है सत नाम। करो कृपा सारे रचना धन कर लईए भाई।

रचना ओई तन है, जीभा ओही तन है, जेड़ी रचना जेड़ी जीभा तेरा नाम जपदी है सतनाम, जेड़ी रचना तेरे गुण गायन करती ते सरबन भले सो बनीक है मेरी जिंदड़ी। वो कन भले ने, वो कन चंगे ने जिन्हां कन्ना विच हर कीर्तन सुन है हर तेरे राम, जिन्हां कन्ना विच तेरे कीर्तन दियां आवाजां पहनी, जिन्हां कन्नां विच हे अकाल पुरख तेरी सिफतो सलाह दियां आवाजां पैंदियां ने, ओ कन धन ने ते ओ रसना धन है जिहड़ी जपदी ए, ओ कन धन ने जिहड़े सुणदे ने।

जिन हर हर नाम तेरा। ए मेरे पातशाह, हे अकाल पुरख, मैं कुर्बान हां उस जीवा तो, उस हिरदे तो, उस मन तो, जिन्हां ने तेरे नाम नू हिरदे विच चेते रखिया, ते स्वास स्वास जपिया सत नाम। करो कृपा सारे रचना धन कर लईए भाई,

तुमरी सेवा कौन कौन न तारे। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाय, माया मोह परम पै भूले। सुतदा रासम प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई।

ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावें दरगह मान पंचे सुह हैं दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करे विचार करते का करना नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या जन सूत। जे को बुझे होवे सचार तबले ऊपर केता भार धरती होर पर होर होर दिसते पार तलै कवण जोर। जी जात रंगा के नाव सबना लिखया बुढ़ी कलाम ए लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखया केता होए। केता ताण सवाल रूप केती दात जाने कौन कूत कीता बसाऊ इको कवाऊ दिसते हो लख दरियाऊ कुदरत कवन काम विचार वार न जावा एक बार जो तुद पावे साई पलिकार। तू सदा सलामत निरंकार असंख जप संग भाओ संग पूजा संग तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती संख दातार असंख सूर मोह बखसार असंख मौन लिबलाए तार कुदरत गवण काम विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साही भलीकार। तू सदा सलामत निरंकार असंख नमूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम कोर असंख अमर कर जाहि जोर असंख गलबड़ हत्या कमाही असंख पापी पाप कर जाहि असंख कूड़ियार कूड़े फिराही असंख मलेश मल बख खाही असंख निंदक सिर करै पार नानक नीच कहै विचार वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार। तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लो असंख कह सिर भार होए अखरी नाम अखरी साला अखरी ज्ञान गीत गुणगा अखरी लिखण बोलण बाण अखरा सिर संजोग बखाण जिन्हें लिखे तैस सिर नाहे जब फरमाए तब तो पाए। जेता किता तेता नाओ बिणना वै नाही को थाओ कुदरत गवण का विचार बार न जावा एक बार जो तुद भावै ऐसा ही भलीकार। तू सदा सलामत निरंकार भरिया हथ पैर तन दे पानी तोता उदर सुखे मूत बलीती कपड़ होए दे साबुण लई आवतोए। भरिया मत बापां कै संग ओह तो पहना वै कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख लै जा आपे बीज आपे ही खा। नानक हुक्मी आव जाह तीरथ दब दया दत्त दान जे को पाव दिल का मान सुनया मन अमन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे मनाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए सुवस्त आत बाणी भरमाओ सत सुहावन सदा मन चाओ। कवण सुबेला भक्त कवण कवण सित कवण वार कवण से रुति मा कवण जिथ आकार वेल न पाई पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त न पायो कादियां जे लिखण ले कुरान थित वार न जोगी जाने रुतमा न कोई जा करता सिर ठीक साजे आपे जाने सोई। किव कर आखां किव सालाही क्यों वरने किव जाना नानक आखण सब को आख एक दू एक सियाणा बड़ा साहिब बड़ी नाही कीता जा का होवै नानक जे कहो आपो जाने अगे गया ना सोहै। पातालां पाताल लख आगासा आगास उड़क उड़क पाल सके वेद कहन कवात सहस अठारह कहनक ते बास लूक धात लेखा होए ता लिखी है लेखा होए विनाश। नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाए ती सुलतना पाईया नदियां अत बह अपवहे समुद न जानिया समुंद शाह सुल्तान ग्रहा सेती माल धन कीड़ी तुल न होबनी जे तिस मनो न विसरै। अंत न सिवती कहण न अंत अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुनना न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै किता कार अंत न जापै पारा वार अंत कारण किते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाए।
ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਈ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਇਹ ਬੜੇ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤੇ ਸੂਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਬੜੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੇਤਿਆਂ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ। ਕੇਤੇ ਖਬਦ ਟਹਿ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਕਾਹੀ ਕਾਹੇ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁਖ ਭੋਗ ਸਦਮਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣ।

किते आखे आखण पाए, किते कह कह उठ उठ जाए। इते किते होर करे दाख न सके कई के, जे बुड़ पावे ते बुड़ होए, नानक जाने सचा सोए। जे को आखे बोल विगाड़, तां लिखी असर गावार अंगवार। सो दार केहा सो कर केहा, जित बह सर्व संभाले। बाजे नाद अनेक संखा, केते वावण हारे। केते राग परिसं कही अन, केते गावण हारे। गावे है तोहन पौन पानी बसंतर, गावे राजा धर्म द्वारी। गावे है जित गोद लिख जाने, लिख लिख धर्म विचारे। गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारी। गावे इंद्र दासन बैठे देवत्यां दर नाले। गावे है सद समाधि अंदर, गावन साध विचारी। गावन जति सदी संतोखी, गावे वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर, जुग जुग वेदा नाले। गावे मोहनिया मन मोहन, सुरगा मछ पयाले। गावन रतन उपाय तेरे, अठ अठ तीर्थ नाले। गावे जोध महाबल सूरा, गावे खानी चारे। गावे हैं खंड मंडल बर पंडा, कर कर रखे तारे। सही तुध नो गावे हैं जो तुध पावन, रते तेरे भगत रसाले। होर किते गावन से मैं चतन आवन, नानक क्या बिचारे। सोई सोई सदा सच, साहेब साचा साची नाई। है पी होसी जाय न जासी, रचना जे नरचाई। रंगी रंगी पाती कर कर, जिनसी माया जिन हो पाई। कर कर वेख किता अपना, जिव दसदी वड्याई। जो दिस पावे सोई करसी, हुक्म ना करण जाई। सो पातशाह जां पात साहिब, नानक रहन रजाई। मुंदा संतोख शर्म पद जोड़ी, ध्यान की करें बेभूत। खिंथा काल गुवारी काया, जुगत डंडा प्रतीत। आई पंथी सगल जमाती, मन जीत जग जीत। आदेश आदेश, आद नील अनाद अनाहत। जुग जुग एको वेश, भुगत ज्ञान दय भंडारण। गट गट वाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जन कीर। दिस देवर साध, संजोग बजोग द्विकार चलावे। लिखे आवे भाग, आदेश दिशयादेश। आद नील अनाद अनाथ, जुग जुग एको वेश। एक दूजी पौ लख हो है, लख होवै लख बीस। लख लख गिड़ आखियां है, एक नाम जगदीश। इतरा पत पवड़ियां, चढ़िया हुए अकीस। सुन गलां आकाश की, गीटा आई रीस। नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस। आखण जोर चुपै नह जोर, जोर न मंगण देण न जोर। जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राजमाल मन सोर। जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार। जिस हथ जोर कर विखै सोए, नानक उतम नीच न कोए। राति रुति स्थिति वार, पवन पाणी अग्नि पाताल। तिस विच धरती साप रखी धर्मसाल। तिस विच जी जोत के रंग, तिन के नाम अनेक अनंत। गर्मी गर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। दिथै सोहन पंच प्रवान, नदरी करम पवै निशान। गच पकाई उथै पाए, नानक गया जपै जाए। धर्म खंड का धर्म, ज्ञान खंड का खो कर्म। केते पवन पाणी बसंतर, केते कान महेश। केते वरमे काड़त घड़िया, रूप रंग के वेश। केतियां करम भूमि मेर, केते केते तू उपदेश। केते अंद चंद सूर, केते केते मंडल देश। केते सद बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश। केते देवी वेश, केते देवदान मुन, केते रतन समुंद। केतिया खाणी, केतिया बाणी, केते बात नरेंद। केतिया सुरती सेवक, केते नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कूड आनंद। शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै काटत कड़ी है बहुत अनूप। ताकियां गल्लां कथिया न जाए, जे को कहे पिछे पछताए। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सुधां की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर।
ਤਿਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ ਤਿਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਜਿਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨ ਕਥਨੇ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰਹੇ ਨ ਠੱਗ ਜਾਹੀ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ ਤਿਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੈ ਲੋ ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਸੱਜੈ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਬ੍ਰਹਿਪੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨ ਅੰਤ ਤਿਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਖਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਹਰਣ ਮਤ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਪਾਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ ਪਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਜਿਹੇ ਨਰ ਵਰੰਜਾ ਤਿਆਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਹਰ ਦੇਖ ਭੇਖ ਕਉ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤਨ ਪਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੋਜ ਕਹਿ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹ ਸਹਾਣ ਗਣ ਜੈ ਤਿਰ ਪਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਾਰਿਆ ਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਉਦਵ ਸਰਵਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਣ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਉਭਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਸ਼ੰਭ ਨਮਸਤਵੰਗ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰਗ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਤਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਏਕਾ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕਾ ਨਮਸਤੰਗ ਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਗਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤਰਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਦਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸਯੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਮੇ ਨਮਸਤਸਤਰੰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਭਾਵਾਜਵੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਵੇ ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਭਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਧੰਦੇ ਨਮੋ ਅਵਸਥਾ ਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹਾਂਤੇ ਨਮਸਤਸ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਸੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਵ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਦਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਜੂਹਾਂ ਪੂਹਾਂ ਲੇਖਾਂ ਪੇਖਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮ ਹੈ ਅਦੇਹਾਂ ਪਿਆਂ ਜੀਤਾਂ ਪੀਤਾ ਏ ਦਰਮਾਨ ਨਦਾਨ ਤ੍ਰਿਵਰਗਾ ਸਰਗਾ ਨੀਲਾ ਨਾਦਾ ਜਿਹਾ ਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਭਰਨ ਹੈ ਪੂਤ ਹੈ ਭਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਪਾਂਝਾ ਜੂਜ ਹੈ ਜੰਜ ਹੈ ਅਮੀ ਘਰ ਵੀਕ ਹੈ ਦੰਦ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਸੂਜ ਹੈ ਕਾਲ ਹੈ ਜਾਲ ਹੈ
अल्लाह है जहाय अनंत महंत अली कैंद्र श्री कैंद्र लंब है संभ है अगम है जम है भूत है सूत है अलोक है शोक है कर्म है परम है अजीत है पीत है बह गह मानन जान ने गे गय भुजंग प्रयात शंभ नमो सर्व माने समाज दिन दाने नमो देव देवे अभेखी अभेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पावणे अनंगी अनाथ नरसंगी ब्रह्माथे नमो पान पाने नमो मन माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो दान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बद बाधे अनंगी अनामे समाधि स्वरूपे ब्रभंगी ब्रह्माथे समाधि भूते कलंकंग बिनाने कलंके स्वरूपे नमो राजराजेश्वरंग परम रूपे नमो योग योगेश्वरंग परम सिद्धे नमो राजराजेश्वरंग परम हृदय नमो शस्त्र पावणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो योग योगेश्वरंग परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रेत देवेशो धर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो शाशांग नमो भूप भूपे नमो धन धान्य नमो मन माने नमो रोग रोगे नमो संगशनाने नमो मंत्र मंत्रंग नमो यंत्र यंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी रूपे रूपे समातुल निवासी सदा सिद्धता बुद्धता वृद्ध करता अद उर्द अर्दंग गंगो हरता परंग परम परमेश्वरंग पुरुष पालंग सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग अशेदी अपेदी अनामंग कामंग समस्तो ब्राजी समस्तामंग तेरा जोर जा जरी संग जले हैं थले हैं पीता वे है प्रभु अजूगा देश है पेश है भुजंग प्रयात शंभ अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व मान्य समाज दीन धारने नमाज त्वंग नरनाथे नमाज त्वंग परमाथे नमाज त्वंग गंजे नमाज त्वंग पंजे नमाज त्वंग काले नमाज त्वंग पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो वृत वृते नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृष्टंग नमो सर्व करेष्टंग नमो सर्व रंगे दर्पंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे बीजे समाजतंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदार दिशजंग नवासी चरपट शांत सा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अजल भोगे अजल राजे अटल साजे अखल धर्म ला कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भूता सर्वं जूता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल शांता प्रसाद आद रूपनाद मूर्त जोन पुरख पार सर्व मंत्र मान देव पेवाद उदार सर्व पालक सर्व काल को सर्व गोपन काल जतर तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जाति जाकर रूप रंग न रेख आद पुरुख दार मूर्त यो नाद शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जतर तत्र दिशा विशा हुई फैलु अनुराग नाम काम विहीन पेखत दामू न जाही सर्वमान सर्वतर मान सदैव मान तताही एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल खेल खेल न अंत गोबर एक देव पेव न जानी जय बेदर्क देव रूप रंग न जात पात सु जानी कह जय बहुत आत्मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन जकर बकर फिर चतर जाक मान ही प्रतीन लोक चौदह के बिखय जग जापि जय जाप आद देवन आद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप बनीत मूर्त पूर्ण पुरुख पारु सर्व विश्व रचियो सुयम पवगण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त काल पुरुख देश धर्म धाम सुपरम रहत पूजा लख पेश अंग राग न रंग जाक जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूपा मी कान औसत एक पुरुख बदूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप सूत अंगहीन अपंगनात्म एक पुरुख पारु सर्व लायक सर्व गायक सर्व गोप्रत पारु

रहेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद के बैठे हो भगत ध्यान लगायो न हाथ फिर लिए साथ समुद्र न लोग है ऊपर लोग गवायो बास कियो बख्यान सो बैठ गए ऐसे ही ऐसे सो बैठ बतायो साच कहूं सुन लिहो सब जिन प्रेम की ओर धनी प्रभ पायो काहू ले पान पूछ दर सिर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लख हर वाची दिशा में काहू पुछा कोसी सुनवायो कहू बदान को पूजद है पास कहू मृदान को पूजन तायो गुर करो।

अतः कष्ट सहाते हुए शहीदियां पाया तेना सिंघा सिंघिया भुजंगिया दी पावन कमाइया दा ध्यान करके बोलना जी प्रवत खालसा जी की अरदास बेनती है प्रवत खालसा जी को आप जी का प्यारा नाम वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित्यावे चित्यावे का सदका सर्व

भया को नावा करिया पाचा संगत ने दूरों निर्वाह करके हालिया भरिया सदा रूप से फुलताम अर्पण कीतिया पातशाह जी आपिया के घर दी थी भाई साहब भाई भुपिंदर सिंह जी वालों भुपिंदर जीत सिंह जी वालों पातशाह जी तन मन धन करके।

साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खुले बैठे गुरु प्यारे सत्संगी जनों

नियमख नियमख तुम ही प्रतपाल हो, हम बारिक तुमरे तारे। जेह वा एक कवन गुण कहिया, बेशुमार बेअंत स्वामी, तिरु अंत न के नहीं लहिया रहाउ। कोट पराध हमारे खंड हो, अनक विधि समझाव हो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपन बिरद रखाव। तुमरी

आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कस्या न जाया दाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष बिधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगला कार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक। उतारे जो अंतर नाम सर्व मैं पीख है भगवान, नियमक नियमक ठाकुर नमस्कार, नानक हुआ परसो सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही दसना पारस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, परतर रूप न पेख नेतर, साध की टहल संत संग हेत, कर्ण न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिख्या पर हरे, मन की वासना मन ते तर, इंद्री जत पंच दोख ते रह, तो नानक गुण मध्य को ऐसा परस, वैष्णो सोजस ऊपर सो प्रसन्न, मिशन की माया ते होए पैन, कर्म करत हो वह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बांछ, केवल भगत कीर्तन संग राचय, मन तने अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अब्र नाम जो पावे, नानक ओ वैष्णो परमगत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसा सगला परम, ओंकार पूजा सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मल खोवै, भगवत इस भगवती की मत उदम होवै, भगवंत की टहल करे न तनीत, मन तन अर्पय विष्ण प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नाम आत्म मैं शुद्ध है, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित का उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जोन न आवे, वेद प्राण सिमृत बुझै मूल, सुखम मैं जन स्थूल, चौं वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौं वर्णा में जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, ना साध संग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उर तारे, पास्त प्रीत मुग्ध पाथर को तारे, सर्व दुरो का उखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कित न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिख्या दुर कर्म। श्लोक। नानक तिस मिलै जिस लिख्या तुर कर्म, जिस कहे मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसांतन पाए तन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सुदास दरगा प्रवान, अपने दास कौ आप कृपा करे, तिस दास कौ सब सो जी परे, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म हिताव, जीवन मुक्त सऊ कहावै, तैसा हरक तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं बयोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बेखाटी, तैसा मान तैसा अभमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो बरताही साई जुगत, नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाऊ, जित जित कर रखै तैसा तिन नाऊ, आपे करन करावन जोग, प्रभु पावै सोई फन होग, पसरों आप हो अणत रंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पय निहाल। श्लोक। औसत करे अनेक जाने अंत न पर वार, नानक रचना प्रभरची बहु विजनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमेह उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तभी स्रोते, कई कोट आत्म ध्यान धारे, कई कोट कब काव विचार हैं, कई कोट नवतन नाम ते आवे, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट पहे अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिग आत्मन कोर, कई कोट पर दर्ब को हृय, कई कोट पर दुख न करहें, कई कोट मायाश्रम माही, कई कोट परदेश परमाहें,
ਜੇਤ ਜਿਤ ਲਾਭੋ ਤੇਤ।

0: नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राज रस भोगी, कई कोट पंखी सर्पो पाए, कई कोट पाथर बिरखन बजाए, कई कोट पवन बाणी बसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट शशि अरसूर नखेत्र, कई कोट देव दानवेंद्र सर शतर, सगल समग्री अपने सूत धारे, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस ने सतारे, कई कोट राज तम सात, कई कोट वेद पुराण सिमरदार सास्त, कई कोट किए रतन संबंध, कई कोट नाना पर घर जंत, कई कोट किए चर जीवे, कई कोट गिरी मेर सुवरन थीवे, कई कोट जाख केंद्र पसाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच, सब ते नेर सब ऊते दूर, नानक आप लिपत रहे भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नारका सुरग निवासी, कई कोट जन्म जीव मरे, कई कोट बहु जोनी फिराए, कई कोट बैठती खाही, कई कोट काले थक पाही, कई कोट दी किए धनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जय जय पाणा तह तू रख, तह तह रख, नानक सब काश ब्रह्म कै हाथ है, कई कोट पै बैरागी, राम नाम संग तन ने बैरागी, कई कोट प्रभु को खोजंते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभु प्यास, दिन को मिलियो प्रभु नाश, कई कोट मांगे सतसंग, पार ब्रह्म सिद्धन लागा रंग, जिनको होए प्रभु आप सुप्रसन्न, जिनको होए आप सुप्रसन्न, नानक तेजन सदा धन धन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, कई बार बसरो बसार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट किए बह कीने बहु पात, प्रभु ते होए प्रभु माए समात, ताका अंत न जाने कोई, आपे आप नानक प्रभु सोए, कई कोट पाप ब्रह्म के दास, जन होवदा तुम प्रगास, कई कोट दत्त के बेते सदा निहार, एको नेतरे, कई कोट नाम रस पीवें, अमर पैसा सद ही जीवें, कई कोट नाम गुण गावें, कई आत्म रस सदा समावें, अपने जन को साथ साथ सुमारे, नानक होए परमेश्वर के प्यारे, श्लोक कारण कारण प्रभु एक है, दूसर नाही कोय, नानक तिस बलिहारणै, जल थल महियल सोए, अष्टपदि कर्ण करावन करन जोग, जो तिस पावे सोई होग, खिन में थापो थप नहारा, अंत नहीं किछ पार आवारा, हुक्मे धार अवतर रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखा अपनी वड्याई, नानक सब में रह समाई, प्रभु पावे मानुकत पावे, प्रभु पावे ता पाथर धरावे, प्रभु पावे बिन सास तेरा के, प्रभु पावे ता हर गुण पाखे, प्रभु पावे ता पात तो धारे, आप तर करे अपन बिचारे, दुआ सिरिया का आप स्वामी, खेल विकसय अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे, कहो मानुख ते क्या हुई आवे, जो तस पावे सोई करावे, इसका हाथ होए ता सब किसले, तिस पावै सोई करे, जो तिस पावै सोई करे, अनजानत विख्या मैं रचै, जे जानत अपनी आप बचै, जे जानत अपन आप बचै, भरमे पूला जद धावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मह नीच की टकौ राज, पार ब्रह्म गरीब नवाज, जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बख्शीस, ताका लेखा न गने जगदीश, जियो पिंड साहब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सर्प को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस पावै सोई हुन थियो, कबहू ऊच नीच मैं बसै, कबहू सोग हर खरंग हसै, कबहू नंद जंद व्यवहार, कबहू ऊ आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार, कबहू नृत करै बहु पांत, कबहू सोए रहै दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की हो तरवाल, कबहू होए बह कबहू होए बह बड राजा, कबहू पेखारी नीच का साजा, कबहू अपकी रतम है आवे, कबहू भला भला कहावे, जो प्रभु राख ते भी रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबहू होए पंडित करे बख्यान, कबहू मौन धारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हास्त पतंग होए जियान, कजोन परमै परमिया। नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावे, ज्यों प्रभु पावे तिवै न जावे, जो तिस पावे सोई होए। नानक दूजा वर न कोई, कबहू साध संग ते पावे, ओ सरसान ते बोर न आवे। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते करंग, सदा बसे पार ब्रह्म का संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभु कहे सद कुरबान। श्लोक सुखी वसे मुसकिनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसका अंतरराज अवमान, सो नरक पाती होवत सुवान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत। आपस को कर्म बंत कहावे, जन्म मरे भोजन परमावे, तन भूमिका जो करे गुमान, सो मूर्ख दा ज्ञान। कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे, नानकी हां मुकत आग सुख पावे, तनवंता हुए कर गरवावे, तृण समान का संग न जावे, बो लश्कर मानुख ऊपर करे आस, बल पीतर दां का होए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, फिर मैं होए जाए बसमंत, किसे न बदे आप अहंकारी, धर्म राय तस खरे खुआरी, गुर प्रसाद जा का मिटै अवमान, सो न जान नानक दरगह परवान। कोट कर्म करे हंधारे, श्रम पावे सगले पर सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकारु, नरक सुर्ग फिर फिर अवतारु, अनक जतन कर आत्म महिंद्र वै, हर दरगह कौ कैसे गवे। आपस कौ जो पला कहा वै, तिसे पलाई निकट न आवै, सर्व की रेंज कै मन होए, कौ नानक तां की निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कछ होए, तब इस कौ सुख नाही कोए, जब हे जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग ने चलना ही चीत। जब लग मोह मगन संग माई, तब लग धर्म राय दे सजाए, प्रभु कृपा ते बंधन टूट टूट, गुर प्रसाद नान कौन छूट, सहस घटे ला कौट तावे, तृप्त नावे माया पाछ पावे। अनक भोग विख्या के करे ने तृप्ता, विखब खब मरे, बिना संतोख नहीं गौरा जय, सुपन मरोठ सब थे सब का जय। नाम रंग सर्व सुख होए, वडभागी किसे प्राप्त होए, करन कराब ने आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करन कराब ने आपे आप, इसका करन कराब ने करने हार, इसका हाथ काम विचार, जैसी दृष्ट करे दैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किस कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब उनके संग, बुझे देखे करे विवेक, आपै एक आपै अनेक। मरे न बिनस आवे न जाए, नानक सदी रह समाए, आप उपदेश समझे आप, आपे रचिया सबके साथ। आप की नो अपन विस्तार, सबका शुष्काओ करने हार, उससे बिन कहो किस होए, शांत अंतर एक सोए। अपने जल तप करने हार, कौते करे रंग पार, मन मह आप मन अपने माही, नानक कीमत कह न जाए। सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद कने बखियानी, सच सच सच सब कीना, कोट मदे कने विरले जीना। पला पला पला तेरा रूप, अत सुंदर पार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कड़ कड़ सुनी वे सरवण मुखियाणी। पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत।
1: श्लोक संत सरन जो जन परै, सो जन उदर नहार, संत की निंदा नानका, बौर बौर अवतार। अष्टपदी संत कह दुख ने हार जा घटे, संत के दुख न जमते नहीं छुटे, संत के दुख न सुख सब जाए, संत के दुख नरक में पाए, संत के दुख न मत होए मलीन, संत के दुख न सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुख न थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक पी तरै। संत के दुख ते मुख पावे, संतन के दुख न काग जो लवे, संतन के दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन सर्प जोन फरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को छले, संत के दुखन ते सब जाए, संत के दुखन नीच न चाहे, संत दुखी कथाओं को नाहे, नानक संत पावे तवें पी गत पाहे, संत का निंदक मां अतताई, संत का निंदक खिंटक न पाई, संत का निंदक मां त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजहीन, संत का निंदक दुखिया अर्धीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख, संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसे का नहीं मित, संत के दोखी को डान लाग गए, संत के दोखी को सब त्याग गए, संत का दोखी महाअहंकारी, संत का दोखी सदा भिखारी, संत का दोखी जन्मय मरे, संत की दुख न सुख से टराए, संत के दोखी को ना ही ठाओ, नानक संत भावे तन लय मिलाए, संत का दोखी अद बीते टूटे, संत का दोखी कते काज न पहुंचे, संत के दोखी को ध्यान फरमाई गए, संत का दोखी उजड़ पाई गए, संत का दोखी अंतर ते थोता, जो सास बिना मृत की लोथा, संत के दोखी की जड़ किशना है, आपन बीजा पे काहे, संत के दोखी को अव न रखन हार, नानक संत भावे तन लय उबार, संत का दुखी बेलाए, जो जल ब्यून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, जो पाव की बन नहीं त्रावे, संत का दुखी छटे अकेला, जो बुआ तिल खेत माए लहेला, संत का दुखी धर्म से रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तस पावे सोई पया, संत का दुखी बिग रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए, संत के दुखी की बुझे नासा, संत का दुखी और चले निराशा, संत के दुख न त्रटे कोये, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया कृत न मेटे कोये, नानक जाने सच्चा सोए, सब कर तिसके ओ कर निहार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उत्सव करो दिन रात, तिसे त्यागो सात ग्रास, सब कछ वर्ते तिसका किया, जैसा करे तैसा कोतिया, अपना खेल अव कर निहार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे तिसे अपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से, श्लोक सजो सियान पुसुर जनो, सिमरो हर हर राय, एक आसर मन रखो, नानक दुख परम पो जाए, अस्पदी मनो की टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक भगवान, जिसके दिए रहे गाये, बौरनत सुना लगे आए, मारे राखे को आप, मनो कह कृष्णा ही हाथ, जिसका कुंभू सुख होए, तिसका नाम राखंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन लागे कोये, औसत मन में कर्म रंकार, कर्मन मेरे सद व्यवहार, निर्मल स्नामृत पियो, सदा से ला कर ले जियो, नैनो पेगता का रंग, सात संग बन से सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगा नानक उजल मथा, बड़ पागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पुछाने, एतो की ओसो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तने निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपना सुजे, तिसकी जानो तृष्णा बुझे, सात संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ अर्जन रहत, आंदन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जे जन की आशा, तिसकी कटिए जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिस पार ब्रह्म मन चित आवे, सो संशय लै नहीं डलावे, जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरप्रसाद तब सब बुझिया, जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई स्थूल, नह के जन्म नह किस मरे, अपन चलता पी करे, आमन जाम दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ, आपे आप सगमय आप, अनक जुगत राप थाप, अवनासी नाई किस कंड, धारण धार रहो ब्रह्मांड, अलख पे पुरख प्रताप, आप जपाए तनक जाप, जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरे तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख वसारण आपे मेले कृपाल गुर का सब जपै निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनों कृपा करे बड़ भागे नाम जोत पावे विश्राम नानक तिन पुरखो उत्तम कर मान जो किस करे सो प्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सहस वायो ऐसो होए करने हर पछाणे सोए प्रभ का किया जनमीठल दाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उदय तिसमाए समाये वह शोकन दान उन्हों बने आए आपको अब दिनो मान नानक प्रभ जाने को जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरसा जानन हार जाके सिमरन उदरी है नानक तस बलहार अस्पदी टूटी गानन हार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरसा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अवनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सब प्राणी लोचे कोए जिस बिन नाही तेरे किस काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहे प्रभ की जो सगल कट सो है तनवंता होए क्या को गर्भे जहाँ सबके तिस्का दिया गर्भे अस सूरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कहतावे जे को होए भय दतार ते जिन हार जाने गोवार जब गुरपुरसा टूटे हो रोग नानक सो जन सदा अरोग जो मंदिर को थमे थमता जो मंदिर को थमे थमना त्यों गुर का शब्द मने थमना जो पुखार नाव चढ़त रहे प्राणी गुर चरण लगत निस्त रहे जो अंधकार दीप प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बगास जो महा ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग में जोत प्रगटावे तिन संतन की बाछो तूर नानक की हर लोचा पूर मान मूर्ख काहे बिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्याग तू सहे चितार जो कछ करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान कौन बसताई तेरे संग लपत रो रस लोभी पसंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पासे ती कर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तज अवमान लेहो मन मोल राम नाम हिरदे मैं तोल लाद के संते संगचाल अवर त्याग बख्या जंजाल तान तान कहे सब कोए मुख उजल हर दर के सोए ए पार विरला वो पारे नानक ताके सद बुलहारे चरण साध के तोए तोए पियो अर्प साध को अपना जियो साध की तोर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुरबान साध सेवा वड भागी पाइये साध संग हर कीर्तन गाइये अनक बदन से साधु रखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे ओट गई संत धरियाया सर्व सुख नानक थे पाया मृत को जीवा लनहार भूखे को देवते आधार सर्वन दान जाकी दृष्टि माहे पुरब लेखे का लेना पाहे सब कैसे किसका ओ करने जोग तिस बिंदु सुरहा न होग जब जन सदा सदा जन रैणी सबसे उच्च निर्मले करणी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत ते जन आवे हर प्रतीत भक्त सुनिए ते लोए जाके हृदय को होए सच करणी सचा की रैत सच हृदय सतमुख कैत सची दृढ़ सचा आकार सच वरते सचा प्रसार पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग केश त्रे गुण ते प्रभिन्न तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अस्पदी अवनासी प्रभ मन में राख मन ओकी तू प्री त्याग तिसते परे नहीं किस कोए सर्व निरंतरे को सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गहीर सजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा दाम दयाल कृपा निधान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरनी पाओ नानक कहे मन एव नराओ मनसा पूर्ण सरन जोग जो कर पाया सोई होग हरन परंजा का नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर अंदरो मंगल सर जाके सर्व शोक सुनिए करता के राज में राज जोग में जोगी तब में तपीसर ग्रस्त में भोगी तय तय पक्ते सुख पाया नानक तिस पुर का किने अंत न पाया जाकी लीला की मितना है सगल देव हारे उगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल पुरोही अपने सूत समात ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम त्यावे से ते गुण में जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके

प्रभु अविनाशी एक ओंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहो पूर्ण सब ठाए। नाना विकर मंत मनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवे नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमृत भेद प्राण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे दास पताल, नाम के तारे सगल कार। नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन। कर कृपा जिस आपने नाम लाए, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। रू सत जाका सत सान, पुरख सत केवल प्रधान। करतू सत सत जाकी बाणी, सतपुरख सब माए समाणी। सत कर्म जाकी रचना सत, मूर सत सत उत्पत। सत करणी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तसे सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई। सत भजन साधु उपदेश, सत्य जन जाके हृदय प्रवेश। सत नित बूझे जे कोय, नाम जपता की गत होए। आ सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत। जिसकी सृष्ट सो करने हार, अवर न बूझ करत विचार। करते की मित न जाने किया, नानक जो तिस भावे सो वर्तिया। विस्मन बसम पय बिस्माद, जन बूझिया ते साया साध। प्रभ के रंग राज जन रहे, गुर कै वचन पदार्थ लहे। ओ दाते दो कट नहार, जाके संग करे संसार। जन का सेवक सोड़ भागी, जन के संग एक लेव लागी। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुरप्रसाद नानक फल पावे। श्लोक आ सच जगात सच, है भी सच नानको सी पे सच। अष्टपदी चरण सत सत पर संहार, पूजा सत सत सेवदार। दर्शन सत सत पे कनहार, दर्शन सत सत पे कनहार। नाम सत सत आमनहार, आप सत सत सब धारी। आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभ भक्ता। सुरत सत सत जस संता, बुझनार को सत सब होए। नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जनमान्या। कर्ण कराम तिन मूल पछाणिया, जाके हृदय विश्वास प्रभ आया। तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, भैते निरपो होए बसाना। जिसते उपजै तिस माए समाना, बस माए ले बस गडाई। ताको पिन न कहना जाई, बूझे बुझ नहार विवेक। नारायण मिले नानकेक, ठाकुर का सेव क्या आज्ञाकारी। ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत। ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग। प्रभ का सेवक नाम कह रंग, सेवक को प्रपालन हारा। सेवक की राखी निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ तारे। नानक सो सेवक सास सास समारे। अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सर्व अपने सेवक की सर पर राखे। अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पात राखे, ताकि गत मत कोई न लाखे। प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दे दस प्रगटाया। निकी कीरी मैं कर राखे, पसम करे लश्कर कोट लाखे। जसका सा न काटते आप, ताको रास दे कर हाथ। मांस जतन करत बात, तिसके करत बरते जात। मारे न राखे अवर न कोये, सर्वजिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ वाला खबराणी। बारंग बार बार प्रभ जपिए, पी अमृते मन तंत्र पिए। नाम रतन जन गुरु खपाया, तिसके शौर नहीं दस्ताया। नाम तान नाम रूप रंग, नामो सोखर नाम का संग। नाम राजो जन तृपताने, मन तन नामे नाम सुमाने। ऊर्त बैरत सोत नाम, कहो नानक जन के सद काम। बोलो जासे बदन रात, प्रभ अपने जन की नींदात। करे भगत्या तुम कह चाहे, प्रभ अपने स्यों रहे सुमाए। जो होवा हो सो जाने, प्रभ अपने कव कुम पछाने। इसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण का एक न जानो। आठ पैर प्रभ से जुरे, कहो नानक से ही जन पूरे। मन मेरे तिन की ओट लेहे, मन तन अपना तिन जन देहे। जन जन अपना प्रभु छाता, सो जन सर्व सुख का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्शन पाव मटावे। अवर स्यानम सगली छाड, ते जन की तुम सेवा लाग। आमन जाना भी तेरा, नानक ते जन के पूजो साधु पैरा। श्लोक सतपुरख जन जानिया, सतगुर तिसका नाओ। तिसके संग से खुद रहे, नान कर गुण गाओ। अष्टपदी
सतगुर सेकी करे प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सेकी गुरदुर मत मल रे, गुर बचनी हर नाम उचराए, सतगुर से के बंधन काटे, गुर का सिख बकार ते हटे, सतगुर से को नाम प्रांदे, गुर का सिख बड़भागी हे, सतगुर से कलत पुलत सवारे, नानक सतगुर से को जी ना सुमारे। गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन मह सहे, आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सजावे, मन बेचे सतगुर कह पास, ते सेव के कार्य रास, सेवा करत होए नेकामी, किसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस विषय गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्वम दान दी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म है जान जन में पार ब्रह्म, एके आपने ही कछ भरम, सहस स्यान पलै न जाइए, नान कैसा गुर बड़ पागी पाइये, सबल दर्शन अपेक्ष पुनीत, परसत चरण गत निर्मरीत, ठेठ संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगा गवे, सुनकर वचन कर्ण आगाने, मन संतोख मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर आख्यो जात का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे होए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मलाए, जेबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोल न पहुंच ब्राणी, अगाम गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, नाकी कीमत कने न पाई, अनक भगत बंधन नित कराए, चरण कमल हृदय सिमरे, सत बुलारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, यह रस पावे जन कोए, अमृत पीवे अमृत होए, उस पुरखा ना ही कदे मनास, जाके मन परते गुणसास, आठ पैर का नाम ले, सच दे से उको दे, वो माया के संग न लेप, मन मैरा के हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परम मोह दुख तहते नासे, तब तुम्हारे ठान वरताई, अंध पया दुख ना ठे पाई, जन मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे, पाओ चुका निरपा होए बसे, सगल ब्याद मानते खे नसे, जिसका सातन कृपा तारी, सत्संग जप नाम मरारी, चित पाई चुके भ्रम गमन, सुन नानक हर हर जस सरवन, निर्गुण आप सरगुण पियोही, कलाचार जन सगली मोही, अपने चरित प्रभाव बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिंदु जाना ही कोए, सरबंदरन तेरे को सोए, ओत गोत रव्या रूप रंग, भय प्रगा साध के संग, रच रचना अपनी कल धारी, अनक बार नानक बलहारी। श्लोक साथ न चले बिन भजन, बिख्या सगली शार, हर हर नाम कुमावना, नानक हे तनसार। अष्टपदी संजना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर उपासा मीत बसारो, चरण कमल हृदय में उतारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर वथ, ए तन संचो हो पुरवंत, संजना का निर्मल मंत, एक आसरा को मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाहे, जिस तन को चार कौन ठुठतावे, सो तन हर सेवा ते पावे, जिस सो को निसबचे मीत, सो सुख साधु संग प्रीत, जिस शोभा को करे भली करनी, सा शोभा बज हर की सरणी, अनको पावी रोग न जाए, रोग मिटे हर उख दलाए, सर्वं दान में हर नाम दान, जब नानक दरगह परवान, मन पर बोधो हर के नाए, दय दय ताव त्याव ठाए, ताको विघ्न लागे कोई, जाके हृदय बसे हर सोए, कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन से पूर्ण हो आस, भक्त पाए या तुम परगास, चित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जम फांसी, तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवागमन मिटे प्रभ सेव, आव त्याग शरण गुरुदेव, यों रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अनको पाव न छूट न हारे, सिमरत साथ वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन वंचित नानक फल पाए, साधना चाल तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना, सुत मीत कटम्ब अर बंता, इनते कहो तुम कमल सनाथा, राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कमल छुटकार, अस तीरथ सवारी, झूठा डंप झूठ पसारी,
ਜਿੰਦ ਦੀਏ ਤਿਸ ਬੁਝੇ ਨਾ ਬਗਾਨਾ, ਨਾਮ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲਿਹਿਆ ਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬੋਡੂ ਬੇਸਿਆ ਨੇ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਰ ਵਿਖ ਜਾਹੇ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ। ਸਾਰ ਪੋ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸੁਮੈਲ, ਬਿਨਸ ਜਾਇਓ ਮੈਂ ਬਿਖ ਫੈਲ। ਹੋਏ ਚਿੰਤ ਬਸੇ ਸੁਖ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਕਰਾ ਸਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ। ਛਾੜ ਸਿਆਣ ਸਗਲੀ ਮਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਾਵੇਂ ਸਚ ਧਨਾ। ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਚ ਕਰੋ ਵਿਵਹਾਰ, ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਦਰਗੇ ਜੈਕਾਰ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ। ਏਕੋ ਜਾਪੇ ਕੋ ਸਲਾਹੇ, ਏਕ ਸਿਮਰੇ ਕੋ ਮਨ ਆਹੇ। ਇਸ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਨੰਤ, ਮੰਤਨ ਜਾਪੇ ਏਕ ਬਵੰਤ। ਏਕੋ ਏਕ ਏਕ ਹਰ ਆਪ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹੋ ਬ੍ਰਹਵਿਆਪ। ਅਨਕ ਵਸਾਰੇ ਤੇ ਭਏ, ਏਕ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਏ। ਮੰਤਨ ਅੰਤਰੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਤਾ। ਸਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਵ ਸਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਾਚਕ ਜਾਂਦਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵਦਾਨ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਮੰਗੋ ਧੂਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾ ਪੂਰ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵ। ਸਾਧ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਧਿਆਵ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉਂ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੀਤ। ਭਗਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਨਿਤਨੀਤ, ਏਕ ਓਟ ਏਕੋ ਆਧਾਰ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਸਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹਰ ਅਸ ਪਾਵੇ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ, ਜਿਨ ਚਾਖੇ ਸਿਰ ਜਨ ਪ੍ਰਵਤਾਨੇ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ, ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰੰਗ। ਉਪਜੇ ਚਾਓ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ, ਪਰੇ ਸਰਨਿਆ ਸਭ ਤਿਆਗ। ਅੰਤਰ ਪੁਰਗਾ ਸੰਦੇਵਨ ਲਿਵ ਲਾਗ, ਬੜ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ, ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ, ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ। ਜਨੂ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭ੍ਰਮ ਗਇਆ, ਇਸ਼ਪਨੀ ਸਰਦਾ ਸਾ ਪੂਰੀ। ਰਾਵੜਿਆ ਸਾ ਸੰਗ ਹਜੂਰੀ, ਜਸਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਲਿਆ ਮਲਾਏ। ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ, ਸੋਕਮ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਪਾਨੇ। ਸੋਕਮ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣੇ, ਸੋਕਮ ਬਿਸਰੇ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਸ ਦੀਆ। ਸੋਕਮ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਸੋਕਮ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਾਖੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੇ, ਸੋਕਮ ਬਿਸਰੇ ਜੇ ਬਿਖੇ ਕਾਢੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗਾਂਢੇ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੱਤ ਹੈ ਬੁਝਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਧਿਆਇਆ, ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਮ। ਆਮ ਤਿਆਗ ਜਪੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਭਗਤ ਪਏ ਕਰੀਏ ਸੰਸਾਰ। ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਤਨ ਹੋਸੀ ਸ਼ਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸੁਖ ਨਿਦਨਾਮ। ਬੂਰਤ ਜਾਤ ਪਏ ਬਸਰਾਮ, ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋ ਤਨਾਸ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣਤਾਸ, ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਹੀ ਸਵਾਓ, ਨੇਤਰੋ ਪੇਖ ਦਰਸ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਮਨ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਮਨ ਤਾਂ ਰੰਗ। ਬਿਰਲਾ ਕਉ ਪਾਵੇ ਸੰਗ, ਏਕ ਬਸ ਦੀਜੇ ਕਰਮਇਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਇਆ, ਤਾਕੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਬਖਸੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ। ਭਗਤ ਬਸ਼ਰ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ। ਸਰਬ ਕਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਰਨ ਕਰਤਾਰ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਧਾਰ, ਜੋ ਜੋ ਜਪੇ ਸੋਏ ਪਨੀਤ। ਭਗਤ ਪਾਏ ਲਾਵੇ ਮਨਹੀਤ, ਹਮਨੇ ਗੁਨੀਆ ਨੀਚ ਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ, ਸਰਬ ਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ। ਏਕ ਨਿਮ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਅਨਕਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ, ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾ ਪੁਰ ਸੰਗੀਤ। ਰਸਨਾ ਜਪਦੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ, ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋ ਬਾ ਧਨਵੰਤ। ਹਿਰਦੇ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਨਿਵਾਸ। ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸਲੋਕ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ। ਆਪਣ ਕੀ ਨਾਨਕਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਬ ਅਕਾਰਿਓ ਕਛ ਨਾ ਦਿਸਤੇਤਾ, ਪਾਪਨ ਤਬ ਕਹਿਤੇ ਹੋਤਾ। ਜਬ ਤਾਰੀ ਆਪਣ ਸੁਨ ਸਮਾਧ, ਤਬ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕੇ ਸੰਗ ਸਮਾਤ। ਜਬ ਇਸਕਾ ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਨਾ ਜਾਪਤ, ਤਬ ਵਰਸੋ ਕਹੋ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਤ। ਜਬ ਆਪਣ ਆਪ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਾ ਮੋਹ ਕਾ ਕਿਸੋ ਉਤ ਭਰਮ। ਆਪਣ ਖੇ ਲਿਆ ਵਰਤੀ ਜਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਨ ਦੂਜਾ। ਜਬ ਹੋਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਤਨੀ,
तब बंद मुक्त कहो किस को गनी जब एक हर गम पार तब नरक सुर को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सहित सुभाई तब सेव सक्त कहो कित थाई तब सेव सक्त कहो कित थाई जब आपे अपनी जो तरे तब कौन डर कौन कत डराई आपन चल तब करने हार नानक ठाकुर अगम पार अवनाशी सुख अपने आसन तै जन्म मरण कहो कह अवनासन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जंकी दास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभु वेखा तब चित्र गुप्त किस पूछ लेखा जब नास निरंजन गोचर गा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे अपन आप ही चरजा नानक अपन रूप आप ही परजा जय निर्मल पुरख पुरख भत होता तय बिन मैं कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन कह मान कौन मान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल चित्र लगत कहो कीस जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय कैसे पू कमन प्रवतावे कर्ण करावन करने हार नानक करते का नाय सुमार जब अपनी शोभा अपन संग मनाई तब कौन माए बा मित्र सुख भाई जय सर्व कला आपे परवीन तय भेद सेव कहा को चीन जब आपन आप और तारे तो सगन अब सगन कहा बिचारे जय आपन ऊच आपन आप मेरा तय कौन ठाकर कौन कहिए चेरा विस्म न विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अशल अशेद हो भे सुमाया ऊहा किसे व्याप सुमाया आपको या पे देश त्यो गुण का ना ही प्रवेश जय एक एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लागे चिंता जय आपन आप आप दियारा तय कौन कथे कौन सुन निहारा बहु व्यंत उच उचा नानक आपको या पे पहुंचा जय आप रचो प्रपंच कार यह गुण में तीनों बसार पापों ते पई कहावत को नरक को सुर्ग वंशावत आल जाल माया जंजाल होमे मोह परम पै पार दू सुख मान अपमान अनक प्रकार की ओ बख्यान आपन खेल अब कर देखे खेल संकोचे तो नानक एक है जय अवगत भगत आप जय पसरे पसार संत प्रताप दो पाका या पे तनी उनकी शोभा उन्हू बनी आपे कौतो करे अम चोज आपे रसभोगन नरजोग जस पावे तस आपन नाय लावे जस पावे तस खेल खिलावे बेस मारता अगंत तोले जो बुलावो त्यो नानक दास बोले श्लोक जी जंत के ठाकरा आपे वर्तन हार नानके को पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथे आ सुनने हार आपे एक आवस्थार जहाँ तुस पावे तह से तो पाए अपने पाने लय समाये तुमते पेन नहीं किश होए आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभु जीवा बुझाए सच नाम सोई जन पाए सोसम दर्शी तक का बेता नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंतर सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ सुनाथ जस राके तस को न मारे सो मुआ जस मनु मुसारे तेसा जबर कहाँ को जाए सब सर एक निरंजन राय जी की जोत जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण दान बेअंत पार नानक दास सदा बलहार पूर्ण पूर्ण रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जम मेरे हो व्याप प्रत पाले जियन बहुपात जो जो रचियो सोते से त्यात जित पावे तित लय मलाये भक्त करे हर के गुण गाये मन अंतर बसवास कर मानिया करन हार नानक एक जानिया जन लागा हर एक कहनाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक को सेवा बनाई हुक्म बूझ परम पद पाई इससे ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निरंकार बंधन तोर पै निर्वैर अंधन पूजे गुर के पैर ए लोग सुखिए पर लोग सहले नानक हार प्रभु आपे मेले सत्संग में करो नंद गुण गावो प्रभु परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ दे का करो उधार अमृत बचनर के गुण गाओ प्राण तरन का ए स्वभाव आठ पैर प्रापे खो नेरा मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश सिर देव सावो मन इच्छे नानक फल पावो हल्त पल दोले सवार राम नाम अंतर उधार पूरे गुर की पूरी दीख्या जिस मन बसे ते साज परीख्या मंत्र नाम जपो ले बुलाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह निभ खे तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक भव न आवे जाहे किसते दूर कहाँ को जाए उभरे रख नार त्याए निरपो जपे सगल पो मिटे प्रभ कृपा ते प्राणी छुटे जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख नाम जपत मन होत सुख
चिंता जाए मिटे अंकार, ये जन को कोई न पहुंचनार, सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, नानक ताके कार्ज पूरा, मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन फेक दो दर्त श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सब दर्शन सुंदर है रूप, तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसे सोत निहाल, ताके नित नया उत्काल, अमर पै अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। श्लोक ज्ञानंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन पुरगास, अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु डीठा, ना प्रभु का लागा मीठा, सब समिगरी इस कट माहे, अंकरंग नाना दिष्टाहे, नौनिधि अमृत भाव का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाध अनहत है नाद, कह न जाइए चर्च समाध, तिन देखिया जैसे आप दुखाए, नानक ते जन सो जी पाए, सो अंतर सो बार अनंत, घटकट ब्या परया भगवंत, तरन माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल, बंकन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बैसंतुर माहे, चार कुंट बैस से समाहे, तिस्ते पिन नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नाम सुख पाओ, वेद प्राण सिमरत मैं देख, सस्यर सूर नक्षत्र मैं एक, बाणी प्रभु की सबको बोले, आप डोल न कबू डोले, सर्व कला कर खेले खेल, मोल न पाइये गुण अमोल, सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत, तार रहो स्वामी होत पोत, गुर प्रसाद परम का नाश, नानक तिन मैं हे बसास, समझना कह पेखन सब ब्रह्म, समझना कह हृदय सब धर्म, समझना सुने सब वचन, सर्वव्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिसकी हे रैत, सतपज साधु सब कैत, जो जो होए सोई सुख माने, करण कराम हार प्रभ जाने, अंतर बसे बार पियो ही, नानक दर्शन देख सा मोही, आप सत किया सब सत, जिस प्रावते सगली उत्पात, जिस भावे तं करे विस्तार, जिस भावे तां एक ओंकार, अनुकला लखी न जाए, जिस भावे तिस लय मलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप भरपूर, अंतर गात जिस आप जनाए, नानक से जन आप बुझाए, सर्वभूत्या वरतारा, सर्वनयन आपे कनहारा, सर्व समगरी जाका तना, आपन जा साप ही सुना, आमन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया, सबके मध लिपतो रहे, जो कुछ कहना सो आपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लय समाए, इसे होए सुनाही बुरा, और इसे होए सुनाही बुरा, और कहो किने कछ करा, आप ला कर तू तकनीकी, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत बोत अपन संग राच, ताकि गत मित कही न जाए, दूसर होए तन सो जी पाए, किसका किया सब प्रवान, गुर प्रसाद नानक जान, जो जाने ते सदा सुख होए, आम लाए लय प्रभ सोए, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जस हृदय भगवंत, तन तन तन जाने आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जाने उनका ए स्वभाव, जान के संचत आओ ए नाओ, आ मुक्त मुक्त करे संसार, नानक ते जन को सदा नाम सुकार। श्लोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म नित कर पेख, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आस अंत त्यागो तरंग, समझना की तूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करो, सत्संग अग्न सागर करो, हर तन के परले भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। केम कुशल सहज आनंद, सत्संग पच परमानंद, नरक नार उधार जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चित भव नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंग बार, नानक जी का ए उधार, उत्तम श्लोक साध के बचन, अमोलीक लाल ए रतन, सुंतक मावत हो तो उधार, आव करे लोका विस्तार, सफल जीवन सबता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाह दवाजे,
सुन सुन अंध करे प्रभु गाजे प्रगटे कपाल महंत के माथे नानक उदरे तिन कहे साथे शरण जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभा मलाए मिट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम सा संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आज जंजाल बकाते रहते राम नाम सुन रचना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक ने भी के पुमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावतान कागर चीत सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्व विशाता की पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवे आमन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सा तेरे बिना निध बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सबके मत सब ते उदास सुंदर चतर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल ते जन कै मुख बने गुरु नानक नाम वचन मन सुने एह निदान जपे मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोविंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भक्त कै मन बसराम कोट प्रासा संग मिटे संत कृपा ते जम ते छुटे जाके मत कर्म प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तेह जन आवे हर प्रभ चीत जनु मरण ता का दुख नवारे दलब देह तत्काल उधारे निर्मल शोभा अमृतता की बानी एक ना मन माए समानी दुख रोग बिनसे पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक के गुण नाम सुख मनी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक के गुण नाम सुख मनी तिथि गौड़ी महला पंजवा श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद जल थल मई अल पूरिया स्वामी सरजनहार अनक पां तोय पसरिया नानक एक ओंकार पौड़ी एकम एक ओंकार प्रभ करो बंदना त्याए गुण गोविंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ताकि आस कल्याण सुख जाते सब कछ होए चार कुंट बह दिस भ्रम्यो तिस बिन अवर न कोए वेद पुराण सिमरत सुने बहु

जो चाहे सोई मिले, नानक हर गुण गाए। गोविंद जस गाइए हर नीत, मिल भजिए साध संग मेरे मीत। रहाओ श्लोक, करो वंदना अनक बार, शरण परो हर राये। प्रम कटिए नानक साध संग, दुतिया पाओ मटाए। पौड़ी दुतिया दुरमत दूर कर, गुरसेवा कर नीत। दुतिया दुरमत दूर कर, गुरसेवा कर नीत। राम रतन मन तन फसाए, तज काम क्रोध लो मीत। मरण मिटे जीवन मिले, बिन से सगल कलेस। आप तजो गोविंद भजो, पाओ भक्त प्रवेश। लाभ मिले तोटा हिरे, हर दरगे पतवंत। राम नाम तन संचवे, साच सह भगवंत। उठत बैठत हर भजो, साधु संग प्रीत। नानक दुरमत छुट गई, पार ब्रह्म बसे चीत। लाभ मिले तो टाहरे, हर दर गए पतवंत। राम ताम तन संचवे, साच सह भगवंत। उठत बैठत हर भजो, साधु संग प्रीत। नानक दुरमत छुट गई, पार ब्रह्म बसे चीत। नानक दुरमत छुट गई, पार ब्रह्म बसे चीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

लागना लागन निका गुरचरणी मन लागना सतनाम श्री वाहिगुरु जी तनासरी महला पंजवां घर बारवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय राव वड्डा भाग भेटे गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन तिस जन ना ब्यापै सागर तरिया साधु संगे